0: है
1: लाइका रेडियो.
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर.
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन.
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स.
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी.
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000.
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
5: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
6: Leica Radio.
5: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Mica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
4: अगर हम साथ हैं
3: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
5: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 एंड टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
7: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड। एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocentre.org, अस्यूमिंग यू वांट टू गेट नोटिस्ड।
0: Raj Badan drives Leicester home with Drive at 4 PM.

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तिस दी वड़ियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: लेस्टर मेलर इज बैक विद एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो. ऑगस्ट 15th एंड 16th एट

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
4: You know, I fan shout at football matches.
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: Deep Roger, waking you up every weekend. Wake up.

0: बिल्कुल, ये मुलाकात तो एक बहाना ही है, वरना हमारे और आपके प्यार का सिलसिला काफी पुराना है। लगभग 8 साल तो हो ही गए हैं, यानी कि इस सेशन पर जब मैं आई थी तो 2018 में आई थी, और देखिए 8 साल कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला, और आपसे हमारा प्यार यूं ही बढ़ता गया, साथ ही जुड़ते गए, और अब तो ये सब एक परिवार सा लगता है। कभी कभी हमारे किसी लिसनर का मैसेज नहीं आता तो दिल में ख्याल आता है कि अरे सब ठीक तो है ना, कहाँ बिजी है। ऐसा रिश्ता हो गया है, तो बस चलिए ऐसा रिश्ता हमेशा हमारा यूं ही आपके साथ बना रहे, और आपका ये प्यार मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको कहते हैं नमस्कार, स्वागत है इस शो में, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और अब देखिए संडे का दिन है, आज हो गई है 7 जून, और आज मौसम हम पर मेहरबान है, यानी कि आज बारिश के कोई चांसेस नहीं है। कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल इत्मीनान से बनाइए, मौसम आज शानदार है। और ऐसे शानदार से मौसम में आज भी चलाएंगे सिलसिला कुछ मीठे कुछ रोमांटिक से गीतों का, जो आपके चेहरे पर स्माइल लाए और आपको आपकी पुरानी यादों में ले जाए। बस आप हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। और आपको ये भी बता दें कि आप 75 पाउंड्स का वाउचर एवरीडे जीत सकते हैं जब आप मनी सेंड करते हैं ओवर 1000 पाउंड्स, या फिर यू कैन गेट 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Ciao,

0: Disha Free Rice Tasting at S&D Supermarket, 169 to 171, Soho Road, Birmingham, B21 9SU. Come along this weekend from 10 a.m. to 5 p.m. and enjoy free veg dum biryani tasting, plus a special in-store offers on Disha Rice and more.
1: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
2: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
0: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: The timeless soul of Qawwali returns to the stage.
0: Presenting Bismil Ki Mehfil UK Tour 2026 live in London.
4: Featuring Bismil, India's biggest Sufi sensation.
0: Known for his soul-stirring voice, electrifying live performances and the modern revival of the Mehfil experience.
4: Join us for a mesmerising night of soulful music and the magic of a true Mehfil
0: on Sunday the 7th of June at Hackney Empire.
4: Book your tickets now at zeppelinentertainment.com. Exclusive radio partner Leica Radio.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
7: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
6: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
8: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी
9: हमारे पति हमको छोड़ दिए
8: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो दिया
9: दिल तो टूट पे किया
8: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT 394
11: ये है लाइका गोल्ड

0: किशोर दा की आवाज में एक और मस्ती भरा गाना, रोमांटिक गाना फिल्म कभी कभी से, जिसमें म्यूजिक था जहूर खयाम का। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो, और आपको गीत पसंद आ रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो ये गाना मेरी ओर से आप सभी के लिए था, और इस गाने को सुनकर हमारे फारूक जी कहते हैं बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत बढ़िया बहुत सारे गाने मैंने क्यू करके रखे हैं, जिन्हें बारी बारी से बजाती रहूंगी, लेकिन आप फारूक जी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रागिनी जी का मैसेज आया है, कहती है आज मेरी मम का बर्थडे है और नील दिव्या शिवम उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स रागिनी जी आपकी ओर से एंड नील दिव्या शिवम पूरे परिवार की ओर से आपकी मम को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। और यस, अब मैं आप सबके मैसेजेस पर एक नजर डालने वाली हूं, तो आप सब तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर आप मुझसे कहते हैं कि आपने हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। रितु,
3: ये है Like a Radio।
0: तो उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। अनिल सोनी जी वियाना में हमारा साथ दे रहे हैं। कीर्ति जी कहती हैं मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती हूँ, थैंक यू कीर्ति जी। कैंट से हमारी सलमा जी जुड़ी हैं। संध्या भाव सर, हमारी संध्या भाव सर, स्वागत है आपका। एंड फरीदा जी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कहती हैं हमारी फरीदा जी कि मैं हमेशा आपको सुनती हूँ और एंड तक सुनूंगी, और मुझे सिर्फ खुशी और सुकून चाहिए जो मुझे आपके प्रोग्राम को सुनकर मिलता है, स्पेशली आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के गाने बजाती हैं। क्या बात है फरीदा जी, थैंक यू सो मच। और आज भी आपको बहुत खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स सुनने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमारी जो जोड़ी नंबर वन है ना, उसमें भी आज कुछ ऐसे ही गाने सुनवाऊंगी, क्योंकि आज उसी जमाने की, या कहूँ आपके जमाने की एक एक्ट्रेस है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो कौन है जोड़ी नंबर वन में, मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल आप सबकी बात की जाए। सो थैंक यू दिलीप जी फैमिली से हमारे साथ हैं, थैंक यू सहर जी, थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको रविवार की शुभकामनाएं। और आपने विचार साझा किया है कि सबसे कठिन चीज कार्रवाई करने का निर्णय होता है, बाकी तो आपकी मेहनत है, क्योंकि आप अगर किसी काम को सोच कर काम शुरू करें ये ही बहुत कठिन होता है, और एक बार काम शुरू हो जाता है तो फिर पता नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। सो थैंक यू तृप्ति जी, गुरुदेव गांजा साथ दे रहे हैं, स्वागत है, स्वागत है मीना लखानी जी, निर्मला जी, अर्जुन जी, महेंद्र पटेल ट्रॉयडन से, एंड ऑफ कोर्स हमारे योगेंद्र जैन एंड उल्लास मृदु जी, एंड सुबह वाली गुड मॉर्निंग भरत गंगाराम जी, मोहम्मद अयुब चौहान, महेंद्र बजारिया, हरीश कतरी तोची जी, थैंक यू वरुणा जी, और जितने भी साथी घर में, गार्डन में, बाहर, काम पर, दुकान पर, शॉप पर, कार में, जहां भी सुन रहे हैं, आप सभी के नाम पर जाता है ये अगला गाना मेरी ओर से।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: यस, अपने जमाने की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म, या कहूँ जितेंद्र के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और ये फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उस जमाने के बड़े बड़े एक्टर्स से पहले पूछा गया था कि आप इस फिल्म में हीरो बनकर काम कर लीजिए, लेकिन सभी ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और बाद में ये फिल्म जितेंद्र की झोली में गई, जो उस समय फिल्मों में काम करने के लिए बहुत ही डेस्परेट थे, और जो भी आया उन्होंने ले लिया और इतनी खूबसूरती से काम किया कि बस इस फिल्म के बाद जितेंद्र का नाम भी उन सभी सुपरस्टार्स में आने लगा जिन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक ने इस फिल्म को हिट कराने में बहुत मदद की। गाने आज भी पॉपुलर हैं और इस गाने को सुनकर हमारी मीना जी कहती है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक तो खूबसूरत गाना और ऊपर से मुकेश की आवाज, मैं जानती हूँ मुकेश जी आपके फेवरेट सिंगर है, तो सारे मुकेश जी के फैंस के नाम पर जाता है ये गाना। उसके अलावा प्रज्ञा साथ है, मिस्टर शेख हमारे साथ है, निर्मला जी हमारे साथ है, स्लाव से सुरजीत जी जुड़ गए हैं, दिव्या जी हैं, मुनीर सुन रही हैं हमें केनिया में और कहती हैं वहाँ पर 12:30 बज चुके हैं। ओ वहाँ पर तो आफ्टरनून हो गई है, तो क्या आप लंच कर रही हैं? जासू जी हमारे साथ है बेल्जियम से, प्रीति हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़ गई हैं रोशनी। सभी का स्वागत है इस शो में। और आज कोई है जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी और उनका नाम बताऊंगी, लेकिन पहले एक गाना और हो जाए।
2: ये है Like a Radio. Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma.

0: यस लताजी और हरिहरन की आवाजें। फिल्म का नाम डर, शाहरुख खान और जूही चावला की फिल्म से लिया था ये गाना। और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो स्टेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बॉलीवुड की एक पुराने जमाने की हीरोइन है जो जन्मी थी, जिनका नाम तो था खुर्शीद अख्तर, लेकिन फिल्मों में आने से पहले वो बन गई श्यामा। यस, आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है और इसीलिए आज हम उन्हें जोड़ी नंबर वन में लेकर आए हैं। उनके गाने यानी कि श्यामा जी के गाने जिसमें आवाज है लता जी की, सुनवाऊंगी मैं आपको आज की जोड़ी नंबर वन में।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: और उन्हीं पर पिक्चराइज एक और गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस समर में कहीं जाना चाहते हैं तो साउथ ऑल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए और बुक कीजिए फ्लाइट्स के साथ साथ होटल्स भी। और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है, 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल पर या फिर उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. ये है Like a Gold.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at laikaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to laikaradio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want.
1: सीटीवी एचडी पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे सीटीवी एचडी पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
0: One podcast, one mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at laikamedia.co.uk.
4: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: यस, लता जी की आवाज में उफ क्या गाना है। और ये कहना है हमारे एजाज जी का, जो चश्म में बड़े प्यार के साथ सुन रहे हैं। और इसके अलावा आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन्होंने कहा है कि दो बैक टू बैक गानों को सुनकर मजा आ गया। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि हर गाने पर आपको मजा आ जाए और दिल से निकले उफ क्या गाना है। थैंक यू, आप अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कितने सारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं। यह है प्रोग्राम का सेकंड आवर और याद दिलाते चलूं जो अभी अभी जुड़े हैं आपके साथ कि मैं हूं ऋतु शर्मा, सैटरडे संडे आपके साथ रहती हूं और इस आवर में सुनवाती हूं जोड़ी नंबर वन। और अब समय है जोड़ी नंबर वन के गीतों को शुरू करने का, लेकिन उससे पहले थैंक यू मालती जी, आई होप आज आप कल से और भी बेटर होंगी, आपकी तबीयत पहले से ज्यादा ठीक होगी। थैंक यू जैस्मीन साथ देने के लिए, थैंक यू उल्लास संध्या भावसर, थैंक यू। एंड इसके अलावा जो अभी अभी जुड़े हैं उनको जरूर मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिसमें नाम है रोजी, रेजीना आपका, दिनेश सॉरी जी, एसएस बोगल जी एंड हमारे वजीर जी, आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनीति जी, अलका जी और समीना जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और बस अब क्या, चलिए शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे कि 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा हमेशा की तरह SBI branch online या फिर उनके योनो ऐप के थ्रू। लेकिन आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरीडे जब आप 1000 पाउंड्स से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं, या फिर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
6: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
7: One more gruesome murder.
5: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल. He's not going to stop. There are many more in danger.
8: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
9: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
10: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पांडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम 3,299 pounds पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020
13: 3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.
15: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.

0: आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर वन और आज की हमारी जोड़ी है लता जी और श्यामा जी की जोड़ी और ये श्यामा जी की फिल्म भाभी से लिया था ये गाना। आज श्यामा की बर्थ एनिवर्सरी है। आपको बता दें कि पुराने दौर के हिंदी सिनेमा की एक बड़ी ही मशहूर हीरोइन रही हैं जिन्होंने 50s और 60s के दशक में यानी कि जो बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है उसमें कुछ बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम किया है। ये फिल्म थी भाभी जिसमें बलराज सहनी थे, नंदा थे, साथ नंदा थी, साथ में श्यामा भी थी। लेकिन आपको कुछ उनके बारे में बताएं, आज जन्मी है वो, आज जन्मी थी 7 जून 1935 को और इनका असली नाम था खुर्शीद अख्तर। लेकिन जब फिल्मों में आई तो इन्होंने अपना नाम श्यामा कर दिया और इसके बाद वो इसी नाम से मशहूर हो गई। श्यामा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1940 के दशक में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और उन्हें सबसे पहले एक्ट्रेस के रूप में जो ब्रेक दिया था वो दिया था डायरेक्टर गुरुदत्त ने। उनकी फिल्म आई थी आर पार 1954 में। इस फिल्म में श्यामा हीरोइन बनकर आई थी और इस फिल्म की सफलता ने श्यामा को रातों रात स्टार बना दिया था।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और अब इस फिल्म की बात हुई है तो चलो इसी फिल्म से सुनवाते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

यस, महेंद्र बजारिया जी आपने सही कहा, गीता दत्त की आवाज थी और ये गाना श्यामा पर पिक्चराइज किया गया था और आज श्यामा ही थी हमारी जोड़ी नंबर वन में। हालांकि मैंने एक दूसरा गीत चुना था जिसमें लता जी के साथ उन्होंने गाना गाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप सबकी फरमाइश पर इस गाने को मैंने बदल दिया। और आपको बता दें कि आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है। अपने 4 दशक के लंबे करियर में उन्होंने लगभग 140 यानी कि 140 फिल्म्स में काम किया है और उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिनमें से एक फिल्म ये भी थी, आर पार। और आपको बता दें कि एक और इनकी फिल्म आई थी शारदा, जिसके लिए बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इनकी फिल्मों के कई सुपरहिट गाने हैं जिसमें से 2 गाने हमने आज आपको सुनवाए। और इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर सिनेमेटोग्राफर यानी कि जो कैमरामैन थे फली मिस्त्री, उनसे शादी रचाई थी, लेकिन सैडली 14 नवंबर 2017 को जब श्यामा की एज 82 ईयर्स की थी, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी लोग उन्हें उनकी चुलबुली अदाकारी, खूबसूरत आंखें और बेहतरीन डांस के लिए याद करते हैं। और आज हमने भी 2 गाने सुनवाकर श्यामा जी को याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और आपके ढेरों मैसेजेस आए हैं। संध्या भाव सर कहती है मजा आ गया, स्वीटी कारा कहती है आपने मेरा दिन बना दिया, प्रज्ञा ये गाना आपको पसंद है।

0: दौर से अब आपको 90s के दौर में लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और बता दें।
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: और आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैंस हैं तो बस क्रेजी फॉर किशोर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट होने वाली है जिसमें किशोर कुमार के गाने ही गाए जाएंगे और आपको सुनने को मिलेंगे, जिसे परफॉर्म करने वाले हैं जॉय इंद्रानी, संजय विद हीनल एंड 515 बैंड। और ये सब होने जा रहा है ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवल एसेक्स। टिकट्स अवेलेबल हैं eventbrite.co.uk पर, या फिर उन्हें आप कॉल कर सकते हैं 0208-514-5400 पर। और लाइका गोल्ड रेडियो है इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स।
0: और चलिए 90s के दौर में ले जाने से पहले ये भी बता दें कि भाई लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है लिव इन रिलेशनशिप्स, जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेजन और स्पॉटिफाई और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Listen back to your favourite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at RadioCentre.org.
1: Leica Radio.
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड।
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574-8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.

0: 6333.
1: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
3: Leica Radio.
4: अभी जा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
5: अगर हम साथ हैं
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
6: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
8: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड. एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
9: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: मस्त म्यूजिक नदीम श्रवण का और उस पर कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज। हमारी जासू जी और हरीश रुदा कहते हैं, हरीश खत्री जी कहते हैं, एक्चुअली ये गाना हमारे नाम कीजिए। चलिए, हमने आपके नाम किया। एंड गुरुदेव गांजा, थैंक यू साथ देने के लिए। और इसके अलावा ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ऋतु हम आपके साथ हैं, सो थैंक यू। और आपको बता दूं कि ये जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को पहले शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, जिन्होंने मिस्टर इंडिया बनाई थी, और 1991 में बनने वाली थी ये फिल्म, जिसमें पहले सनी देओल और तबू को लिया गया था, लेकिन बाद में सनी देओल को हटाकर इस फिल्म में बॉबी देओल को डाला गया। और बॉबी देओल और करिश्मा कपूर के साथ शेखर कपूर ने 1 महीने की शूटिंग भी कर ली थी। और इस फिल्म की पहले ओरिजिनल हीरोइन करिश्मा कपूर थी, लेकिन करिश्मा कपूर को बाद में दूसरी फिल्म मिल गई और उनको लगा कि ये फिल्म शायद ज्यादा बेहतर करेगी, उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। और बाद में ट्विंकल खन्ना को करिश्मा कपूर को ट्विंकल खन्ना से रिप्लेस किया गया और ट्विंकल खन्ना बनी इस फिल्म की हीरोइन और ये बनी बॉबी देओल। और उनकी पहली फिल्म जो अच्छी चली थी, फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा था लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा ड्रैग कर दिया था। लेकिन ये गाना मेरे साथ साथ आप सबको पसंद आया है, सो थैंक यू साथ देने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 घंटा और है, जाने की जरूरत नहीं है, बस रेडियो सेट्स के पास बैठे रहो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए and 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LEICA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 104.7 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: किशोर कुमार की आवाज में याराना फिल्म का गाना जो 1981 में आई थी, और उससे पहले सिलसिला फिल्म का गीत वो भी 1981 में आई थी, और दोनों फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, और दोनों गीतों को आवाज दी है किशोर कुमार ने। और हमारे फारूक जी कहते हैं कि दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, एक तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखी थी और एक अपने दोस्तों के साथ देखी थी। और क्या खुल्लम खुल्ला आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं फारूक जी। एनीवेज, थैंक यू, आपने दोनों फिल्म देखी और गीतों को पसंद किया है। इसके अलावा आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं, और बस मैं चाहती हूँ कि एक बजे तक तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और हिलने की कोशिश भी ना करें, और उसके बाद आपको जहाँ मर्जी जाना है जा सकते हैं। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, और इस आवर में एक बार फिर से मैं रितु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ और आपको कहती हूँ क्या, प्यार भरा नमस्कार और मोहब्बत भरा सलाम। अब देखिए मौसम अच्छा है, शानदार है, और इस वाले आवर में भी कुछ ऐसे गाने मैंने चुने हैं, और इसमें मैं आपको दो बैक टू बैक गीत भी सुनवाऊंगी, और साथ ही साथ आज के आर्टिस्ट ऑफ द वीक वाला गीत भी बजेगा। और आर्टिस्ट ऑफ द वीक है इस बार के हमारे हिंदी वाले, लेकिन उससे पहले बात हो जाए आज के ड्रीवर्स गेम की, और जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनका पहले तो स्वागत है, और दूसरा आपको बता दूं कि ड्रीवर्स गेम में क्या होता है। बॉलीवुड के किसी एक गाने की जो शुरू की तीन चार लाइन्स होती हैं उनसे मैं सिर्फ तीन वर्ड्स पिक करती हूँ, और उनकी मदद से आपको गाना पहचानना होता है। आज के जो तीन वर्ड्स हैं उसमें पहला है हमको, हमको, दूसरा वर्ड है मुश्किल, और तीसरा वर्ड है दीवाना। पहला वर्ड है हमको, दूसरा वर्ड है मुश्किल, और तीसरा वर्ड है दीवाना। अब आपकी मदद के लिए बता दूं कि ये फिल्म 1972 में आई थी, किशोर कुमार और लता जी की आवाजें हैं, और आर डी बर्मन का म्यूजिक है, और एक बहुत ही प्यारा गाना है। अब बताइए कौन सा गाना है अगर आपको पता चलता है तो, और आंसर अपना भिजवाने के लिए नंबर मैं बता देती हूँ।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719।
0: तो एक बार फिर से वर्ड रिपीट कर दूं, पहला है हमको, दूसरा है मुश्किल, और तीसरा है दीवाना। 1972 में आई थी ये फिल्म, किशोर कुमार लता जी की आवाजें हैं, और आर डी बर्मन का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिला दे कि आज £1 आपको देगा 126.5 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये मनी आपको ट्रांसफर करना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप £75 का वाउचर लेना चाहते हैं तो आपको £1,000 से ज्यादा मनी ट्रांसफर करना होगा, और अगर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीतना चाहते हैं तो आपको वो कब मिलेगा, जब आप £2,000 से ज्यादा मनी ट्रांसफर करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. New hits on Leica Radio.

0: मुकेश जी की आवाज में इंदीवर का लिखा हुआ गाना जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सफर फिल्म से लिया था ये गाना और इस गीत को भी आप सबने पसंद किया है, तो चलिए ये गाना मैंने आप सभी के नाम पर किया। निवेदनी थैंक यू कहती हैं, मैं बिल्कुल बैठी हुई हूँ और आपका साथ दे रही हूँ, प्रोग्राम सुन रही हूँ। थैंक यू निवेदनी, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है मैं उनके नाम जरूर लूंगी। लेकिन फिलहाल शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाने वाली हूँ आपको पहला गाना।
1: ये है लाइका रेडियो फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चित्रगुप्त के म्यूजिक पर लता जी की आवाज में जबक फिल्म से था ये गाना, और इस फिल्म में भी श्यामा थी जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: वैसे आज श्यामा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, लेकिन उनके साथ साथ आज एकता कपूर जो कि जितेंद्र की बेटी हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। आज वो 51 इयर्स की हुई हैं और एकता कपूर टेलीविजन क्वीन, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन चलिए बात करते हैं हमारे आज के दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक की, और इसे बजा देते हैं। इस बार इसमें आवाज है लता जी।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: जी हाँ, शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर राज कपूर और नूतन की फिल्म अनाड़ी से था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, जिसे आप सभी ने पसंद किया है और ढेरों मैसेजेस आए हैं। थैंक यू तोशी जी, आप भी सुबह से हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं प्रोग्राम इज वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब समय आ गया है बताने का कि हमारे किन साथियों ने आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने को सही सही पहचान लिया है। तो सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है उनका नाम है एजाज जी चैशम से, आपका जवाब बिल्कुल सही है। कला निधि देसाई, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है। प्रीति बेल्जियम से, जासू जी, राजीव पटेल, भारत गंगाराम, दामिनी बहन, रंजू जी, उल्लास, नरेन पटेल, हाजरा, करसन पिंडोरिया, शरफून, सुरेश पटेल, तोची सहर, शमीम शफीक, निवेदिनी पटेल, दिव्या जी हैरो से, रोशनी, नीलेश तन्ना एंड ऑफ कोर्स हमारी कुकी जी एंड अभी अभी निर्मला जी, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे आप सबने सही जवाब दिया है तो बस मैं आपको सुनवाती हूँ वो गाना जो बना था आज के थ्रीवर्स गेम वाला गाना, जिसे मैंने लिया था फिल्म मेरे जीवन साथी से, आदि बर्मन का म्यूजिक और ये थी राजेश खन्ना और तनुजा की सुपरहिट फिल्म। सुनवाती हूँ वो गाना आपसे बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाते चलूं कि आप अपने हॉलिडे बुक करा सकते हैं साउथ ऑल ट्रैवल के साथ। फ्लाइट्स के साथ साथ होटल्स भी आप बुक करा सकते हैं। एटॉल प्रोटेक्टेड है, 40 सालों से ट्रस्टेड आपके ट्रैवल एजेंट है जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है। तो हॉलिडे प्लान करने के लिए, बुक करने के लिए आज ही विजिट कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल पर और उन्हें कॉल कीजिए ऑन 02085748410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Lemfi means quicker and safe way to send money.
3: Lemfi means low transaction fees and great exchange rates.
2: Lemfi means £10 sign up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKE US.
3: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with Lemfi. Download the LEMFI mobile app today.
4: Lemfi is registered by the FCA. T's and C's apply.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today.

0: किशोर कुमार और लता जी की आवाजों में मेरे जीवन साथी फिल्म से था ये गाना, जो था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गीत। 1972 की फिल्म जिसमें आर जी बर्मन का म्यूजिक था, और ये गाना आप इसे ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। और अभी भी मैसेज आया है आशिक जी आपका, आपने लिखा है कि आप मेरे साथ हैं, मेरा शो सुन रहे हैं और घाना जा रहे हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन आप रिलैक्स होकर इस शो में बजने वाले गीतों को एंजॉय कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। सो थैंक यू, आप अपने बिजनेस ट्रिप पर हैं तो बस हम यही कहेंगे कि बिजनेस ट्रिप पे आप सक्सेस पाएं और अपना ख्याल रखिए। बस जाने की बेला आ गई है और जाते जाते जल्दी से आपको ये बता दूं,
1: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए and 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 104.7 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: और लीजिए बस आज का मेरा और आपका साथ बस यहीं तक। अगला गीत लेकर चलेगा आपको न्यूज़ की ओर, और न्यूज़ के उस पार आप लाइका गोल पर सुनेंगे अनुराग को। लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर पर होंगी फजीला आपके साथ एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगे नीरज आपके साथ। लेकिन आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर इस शो को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन स्टॉप क्लासिक्स सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 2 ऑनलाइन। पंजाबी गीतों के शौकीन है तो लाइका पंजाबी रेडियो, और अगर 90s के गीतों को सुनना चाहते हैं नॉनस्टॉप तो आपके लिए है लाइका रेडियो पंजाबी। तो बस जो मर्जी आए वो सुनिए, साथ देते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू शो में मेरा साथ देने के लिए, और बस अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे। बहुत सा प्यार मेरी ओर से, ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक।
1: Is Leica Radio.
3: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल। Every weekend 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे।
2: ये है
1: Leica Radio.

0: wants to see you. Contact your GP practice.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एग्स्ट्रा ordinary.
3: Punjab the biggest tunes.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Punjab the biggest tunes, not

0: LaikaRadio.com ਤੇ Alexa play Laika Radio Punjabi. Miss your favorite show on Laika Radio Midlands? You can now listen back at LaikaRadio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badan, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Laika Radio Midlands when you want.
1: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394। जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी।
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
4: दिल तो टूट पे गया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
5: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
0: ये है लाइका गोल्ड

0: कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी. व्हाट अ लवली मेलोडियस ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले फ्रॉम द सुपरहिट मल्टी स्टार मूवी वक्त. आई जस्ट लव साधना जी इन द सॉन्ग, शी इज सो प्रिटी.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio. Laika
3: Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: क्या चुप रहूं
5: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है,
5: क्या है

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at Three Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton Three Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
3: 7 days to go. One week left. Arthur Aslam live at the O2 on the 14th of June. An unforgettable night awaits. Book now at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
4: है उम्र का फासला, फिर भी है दिल की करीबियां. देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां. तुमसे तुम तक. हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर.
5: Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: काम की चीज है. इनडीड मोहब्बत बड़े काम की चीज है. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड अग्री विद दिस लवली नंबर इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर. वन मोर अमेजिंग ट्रैक्स in other vocals of Mohammed Rafi Sahab, and I will be with you next hour, so stay tuned.
1: Cranking out the biggest hits for the capital, this is Laika.

0: जाओ।
1: है जवानी तो इश्क होना है, इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: हेरोल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री 2025 कैटलॉग टुडे, कॉल ऑन 0208 507 7900 और डाउनलोड द कैटलॉग फ्रॉम heroldpackaging.com। हेरोल्ड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई क्वालिटी, इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, कैटरर्स, फूड टेकअवे एंड डिलीवरी बिजनेसेस। हेरोल्ड डिस्पोजेबल available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heroldpackaging.com.
4: You know how fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.com.
6: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: थैंक यू आपके साथ का. आई मीन 4 o'clock से आप मुझे सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू लाइक अ गोल. जब कोई बात बिगड़ जाए, पेन डाउन बाय आर्टिस्ट ऑफ द वीक इंदीवर. क्या प्यारे वाले लिरिक्स लिखे हैं इन्होंने, है ना.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Now the silsila of romantic and melodious songs is continuing on this show. On your favorite radio station, Like a Gold. In the vocals of Rafi Sahab and Lata Mangeshkar. Enjoy this lovely track.

0: तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: पल पल दिल के पास, दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल. आई थिंक धर्म जी एंड रॉकी गुलजार वाज सो सो सो ब्यूटीफुल इन दिस सॉन्ग. वेल, एक और गाना दिस आवर एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय. बट रिमेंबर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड ऑन लाइक अ गोल, कॉज नेक्स्ट अप इज सैंडी शाह विद द अमेजिंग गोल्डन rock. I mean, you guys are really going to have a great time. All right, take care. Have a great week ahead. Bye.
1: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.

0: Afsana Khan on the vocals of that one. The title track of the album, Titliya, playing out only on the Sunday Wrap on Laika Radio.
1: Laika Radio.
0: It's time now to kick off with my monthly feature on the show this evening, जहां मैं बात करूंगी अबाउट एक्साइटिंग न्यू बॉलीवुड रिलीजेस इन दिस मंथ ऑफ जून 2026. अब ये जो महीना है इज ऑफिशियली अबाउट टू टर्न द थिएटर्स इनटू एन एब्सोल्यूट सेलिब्रेशन. मसाला एंटरटेनर्स से लेके कॉमेडीज और इंटेंस ड्रामा, ये सब आपके लिए यू नो इस महीने सिनेमाज में इंतजार करेंगे. और साथ साथ ओटीटी पर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिलीजेस हो रहे हैं. सबसे पहले बात करूंगी दो ऐसी मूवीज की जो 5th ऑफ जून को ऑलरेडी रिलीज हो गई हैं एंड ऑलरेडी मेकिंग सम नॉइज एट द बॉक्स ऑफिस. पहले तो डेविड धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. इस फिल्म को एक रोमांटिक कॉमेडी कहा जा रहा है एंड इट स्टार्स वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े इन द लीड. एंड इट इज सेट टू बी द लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर फॉर डेविड धवन साहब. एंड मूवी तो रिलीज हो गई है, इट्स गॉट अ डीसेंट ओपनिंग एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन रिव्यूज जो है दे आर प्रीटी मिक्स्ड इन नेचर. कुछ लोगों ने कहा है दैट इट्स अ ब्रीजी बॉयंट एंड फन एंटरटेनर. लेकिन कुछ अदर्स यू नो कुछ और लोग हैं जिन्होंने कहा है कि इट्स गॉट प्रेडिक्टेबल ह्यूमर एंड अ डेटेड स्टोरी टेलिंग. वेल आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है. आई वुड रियली लाइक टू नो आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में इन केस यू हैव वॉच्ड इट. अनदर मूवी दैट हैज रिलीज्ड ऑन द 5th ऑफ जून इज कॉल्ड बंदर. जहां तक खबरें हैं बॉबी देओल इज डेफिनेटली विनिंग अ लॉट ऑफ प्रेज एंड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंसेस फॉर हिज इंटेंस परफॉर्मेंस इन दिस मूवी. अब अनुराग कश्यप डायरेक्टर हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अमेजिंग यू नो थ्रिलिंग एक्शन इन दिस मूवी एज वेल. सो बताइए इफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी. आई वुड रियली लव टू नो मोर अपडेट्स ऑन एक्साइटिंग रिलीजेस दिस मंथ. Coming soon. Stay tuned.
1: Join the dots with Mesa.
2: Laika Radio.
0: And it's time now to kick off with my weekly fun game. It's called Join the Dots. And of course, catch me if you can. Ek aur fun game hum khelenge show ke last hour mein. अब जॉइन द डॉट्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स यू गाइस नो व्हाट इट इज ऑल अबाउट. मैं आपको एक बॉलीवुड फिल्म के 3 क्लूज देती हूं और आपको क्लूज को जॉइन करके फिल्म का नाम मुझे बताना है. बड़ा ही सिंपल है लेकिन ये सारे क्लूज एक टाइम पे नहीं दूंगी आपको. आपको थोड़ा चैलेंज करूंगी. यू हैव टू गेस द मूवी इन कम से कम क्लूज. ऑलराइट, पहला जो क्लू है इट्स कमिंग योर वे नाउ. आज की मूवी 2017 की रिलीज है और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म के जो लीड हीरो हैं वो हैं जिन्हें हम प्यार से डुग्गू भी कहते हैं. एंड द फिल्म इज इनफैक्ट आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर अंडर हिज होम प्रोडक्शन. और हीरोइन की बात करूं देन शी इज क्वाइट पॉपुलर. इनफैक्ट अभी रिसेंटली उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी जिसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हुई. एंड शी इज ऑल्सो मैरिड टू अ पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर. दैट्स योर फर्स्ट क्लू. आई रिपीट दैट, 2017 में रिलीज हुई है आज की फिल्म. एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म के लीड हीरो हैं हमारे प्यारे डुग्गू एंड फिल्म को प्रोड्यूस भी उनके फादर ने किया है अंडर हिज होम प्रोडक्शन. और हीरोइन की बात करूँ देन शी इज गॉट यू नो अ रीसेंट रिलीज जो नेटफ्लिक्स पे बहुत बड़ी यू नो काफ़ी पसंद की गई है. एंड शी इज ऑल्सो मैरिड टू अ पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर. इफ यू हैव एनी गेसेस अपने जवाब इस नंबर पर भेज दें.
1: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404-793-719. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जय जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स, सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी.
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. This is the largest commercial Asian radio network in the UK. WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719.
4: Leica Radio.
3: Messer's indie pop hit of the hour, The Sunday Wrap.
4: Leica Radio.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Vadhan, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
3: Leica Radio. ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
4: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
5: खुद से भी ज्यादा।
3: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
5: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
3: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394। ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
3: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
6: दिल तो टूट भी गया,
3: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
3: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
8: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: गाना इतना प्यारा है कि ये मुझे उसकी ओर अपनी ओर खींचा चला जाता है। कटी पतंग से ये क्लासिक हिट योर टिल्डा राइस सॉन्ग ऑफ दिस आवर, अ ब्यूटीफुल वन, आई हैड टू प्ले इट, इट्स बीन प्लेइंग ऑन माय माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। किशोर कुमार जी ऑन द वोकल्स ऑफ दैट वन, होप यू गाइस एंजॉयड इट ओनली ऑन लाइका रेडियो। Yes, you tune in to Like a Radio Raj show mein. It's all about interesting Bollywood releases happening in this month of June. और पिछले एक घंटे में मैंने आपको बताया कि है जवानी तो इश्क होना है और बंदर, ये दोनों मूवीज रिलीज हो चुके हैं। And now, next Friday, the 12th of June, we will see the release of three very different yet exciting movies. Let me begin with Imtiaz Ali's Main Wapas Aunga. This is definitely a movie जिसका मुझे इंतजार है, क्योंकि मुझे क्या चीज इंटरेस्टिंग लगी इस मूवी के बारे में, that the movie runs on two timelines, pre-partition and the present day. I know this is sounding very close to the storyline of Love Aajkal, लेकिन इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू में क्लेरिफाई किया that this movie is not a cross-generational romance. It is a single, soulful love story which is just set across two different timelines. The movie stars Vedang Raina and Sharvari in the main lead. और दिलजीत दोसांज एंड नसीरुद्दीन शाह हैव आल्सो गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स टू कनेक्ट बोथ टाइमलाइंस इन दिस मूवीज। सो दैट्स रिलीजिंग ऑन द 12th ऑफ जून एंड ऑन द सेम डे वी हैव मनोज बाजपाई कमिंग बैक टू द स्क्रीन्स विद हिज रिलीज, द मूवीज कॉल्ड गवर्नर। ये एक फाइनेंशियल थ्रिलर है विच इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1990s में हुए थे। दिस इज रियली इंटेंस एंड आई वांट टू वॉच दैट वन एज वेल। और फिर कंगना रनौत इज ऑल्सो बैक विथ हर रियल लाइफ इंस्पायर्ड ड्रामा कॉल्ड भारत भाग्य विधाता जो 2611 इवेंट्स पर बेस्ड है। सो नाउ यू टेल मी, आप किस मूवी में इंटरेस्टेड हैं? टू मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजेस टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट आवर। स्टे ट्यून्ड टू लाइका रेडियो।
1: दिस इज लाइका रेडियो। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Yes, holiday breaks, and we think about Southall Travels, don't we? Make this summer memorable with Southall Travels, which are trusted for over 40 years and are winners of the British Travel Award as well. You can explore beach breaks, city escapes and more with holiday deals which include flights, hotels and atoll protection as well. Visit Southall Travel or call them on 0208-574-8410 to know more.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Yeah.
3: Like our radio.
4: Hello, this is Annika from The Weekend Musty Show. Make sure you catch me between 1 and 4 every Saturday and Sunday across London and the Midlands.

0: Radio.
1: You're tuning in to Laika Radio, 1458 AM, DAB Digital Radio, Alexa, Google Home, and LaikaRadio.com. And of course, our Laika Radio mobile app, वैसे Laika Radio mobile app is not just about Laika Radio London, it's about Laika Radio Midlands, Laika Radio Greater Manchester, Laika Radio Gold, Laika Radio 90s, जी हाँ, UK's first 90s or Bollywood music station, Laika Radio Punjabi, our first ever Punjabi music station, and Laika Gold 2, which is all about Bollywood classics and non-stop. This is your Laika Radio network, guys. And now, recently, our sensational podcast, Laika Extra, ये भी शुरू हो गया है, which focuses on a new form of entertainment where we discuss on all important topics which are affecting the British Asian community. Thank you so much for the amazing response you've given us so far, and we hope to continue to give you even better in the future. वैसे दिस इज ऑल अबाउट हार्ट वार्मिंग म्यूजिक द संडे रैप विद मी मेसा एंड इन दिस आवर एज वेल मैं आपको यू नो सुनाऊंगी कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंक्लूडिंग द लाइका चार्ट टॉपर ऑफ दिस वीक another beautiful indie pop hit which is a ghazal in the vocals of Jagjeet Singh Sahab and of course our Pakistani hit of the hour as well. All of that happening, don't go anywhere.
0: Catch me if you can with Mesa.
2: Laika Radio.
1: And of course, another thing happening in this hour is our fun game, Catch Me If You Can. बड़ा ही amazing, you know, लगता है मुझे जब आप join the dots खेलते हैं and उसके बाद immediately Catch Me If You Can के लिए ready हो जाते हैं. In this game, what I do is I test your lyrical knowledge, the songs that you know so well, that's what you think, उसे test करती हूँ मैं. It's a challenge जहाँ मैं आपको तीन गाने सुनाती हूँ और उनमें से किसी एक गाने में एक सॉन्ग लाइन में छोटी सी गड़बड़ करती हूँ तो आज भी मैं एक छोटी सी गड़बड़ करूँगी और आपको वो गड़बड़ पहचान के मुझे जवाब भेजना है. ऑलराइट, तो पहला गाना है कोई लड़की है जब वो लड़ती है बारिश होती है छनक छनक झुम झुम दिल तो पागल है से. दूसरा गाना है प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना मेजर साहब से. और तीसरा गाना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा फ्रॉम अ हाफ गर्लफ्रेंड. बताइए किस गाने में मैंने गड़बड़ की है. आई एम गोना रिपीट दैट फॉर यू. पहला गाना है कोई लड़की है जब वो लड़ती है बारिश होती है छनक छनक चुम चुम फ्रॉम दिल तो पागल है. दूसरा गाना प्यार किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना फ्रॉम मेजर साहब. और लास्ट गाना है मैं फिर भी तुमको चाहूंगा हाफ गर्लफ्रेंड से. बताइए किस गाने में हुई है गड़बड़ ऑन दिस नंबर.
0: WhatsApp Laika Radio Midlands now on 07404 793 719.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk or call 020-3773-6333 now. Apta bonded. Mantra Holiday.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Easing you through the night with the Midlands biggest Asian hits on Leica Radio.

0: your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but...